सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजनहारा।

जी तुद जेवड अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहि, सुरस न पावई। सुनै मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट,

अस गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया

उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे। सुनी सची बाणी संत साजन भये सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास, रामदास हुई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय, श्री हर

अन्तुना पावतु देवसुभमुन इंद्र महान शिव जोग करी फुन भेद बिरंच विचार रहियो हर जाप ना छाड़ियो एक करी मथुरा जन कौ प्रभु दीन दयालु है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन कौ गुण ज्योत अर्जुन माह तरी रामदास गुरु जग तारन कौ

एक उपराला किया जा रहा है कि हर गुरु नानक नाम लेवा सिख नू श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नू पढ़न अते विचारन की प्रेरणा दिती जावे और बाणी अनुसार जीवन जाच सीख के जन्म सफला किया जा सके। जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमो धक्के खाए, अनुसार नशियां तो बचाया जाए। एक पिता एकस के हमबारक अनुसार, आपसी भाईचारा एकता दा सुनेहा, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान, और गुरु ग्रंथ साहिब जी दी प्रेरणा सदका बाणी अनुसार, नारी जाति दा विशेष सम्मान, सौ क्यों मंदा आखी है, जित जम्मे राजान तो संसार नू जानू करवाना, कर्म कांड तो बचन लई प्रेरणा देना, जिस तरह फुरमान है कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। केवल अकाल पुरख दी सिफत सलाह नाल चुड़ना, एक अकाल पुरख ते विश्वास, प्रीत प्रतीत सबना जिया का एक दाता दा सुनेहा, घर घर पहुँचाण वास्ते शब्द गुरु प्रचार संस्था टी सीरीज दे सहयोग नाल आप संगतां वास्ते आडियो वीडियो कैसटां राही निरोल गुरबाणी दा कीर्तन अते सुनेहा पहुँचा रही है कि हर सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नू अर्थां सहित पढ़े, घटो घट 400 साल प्रकाश दिहाड़े नू मनाउन तक एक सहज पाठ जरूर करे और अपने जीवन नू सफला करे। कीर्तन दी लड़ी दे विच भाई साहिब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले शब्द सरवण करवा रहे हैं। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, आओ अरदास रूप हो करके इस शब्द का गायन करिए, ता जो असी सारे ही शब्द गुरु दे लड़ लग जाइए। आओ आप जी सरवण।

हे पवित्र शब्द, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास। जब सतगुर दे चरणा में अरदास कीती, फिर सतगुर ने अरदास सुन। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख दी लाज रखता है, फिर उदे चरण तोतो के पेड़ नू क्यों ना मन करे। कई कहंदे ने अरदास कीती पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा महावाक है, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारा संगतां दर्शना वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हन। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई। ए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया। वैसाखी वाले दिन केसगढ़ दी पवित्र धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत दी दात दित्ती। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब दे किले नू जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबां ने आनंदपुर साहब दा किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार कीती। सरसा नदी पार कीता, गुरु साहबां दा सारा वही इत्थे आके विछड़ गया। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहिबजादे ते 40 दे करीब सिख इक पासे, तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहिबजादे अते माता गुजरी इक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी इह बसंत कौर सी, इहदे हथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। ए भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मना नाल लड़दी हुई नदी पार करदी है। ठोकर लगी, थले डिग पई। सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर, ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान, मैं कलगियां वाले पिता दा अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नू कैद कीता गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली नहीं। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नू कैद कीता गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया। बसंत कौर नू कहन लगा, बसंत कौर, तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनू बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नू पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम मुठ के खलोई, गरज के कहन लगी, ओ दुष्टा, परा हो जा, ओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, ओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नू प्रतख दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया, हिलजुल नहीं सी सकदा। फिर इसने
बेनती की थी बसंत कौर मैनू बख्श दे मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया बसंत कौर दे पैरां ते मत्था टेकया एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जा तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए हर दुख वेले सतगुर साडी भी इसी तरह सहायता करे।

0: नमो चंद्र चंद्र नमो बान बाने
1: नमो दैत्य दैत्य नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो बान बाने नमो बाद बादे
0: गीया नामे समस्ती स्वरूपे
1: लंगी परमाते समस्ती विभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजेश्वर परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वर परम हृदये
0: नमो शस्त्र बाणे
1: नमो
0: अस्त्र बाणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता
0: देखिय परमी अभोगी अभुक्ते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवे स्वकर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
1: नमो साह साह नमो कुपुपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमो स्थल स्नाने
0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे रूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालन चाचरी छन जले है तले है पीत है पे है
1: प्रभु है जो है देश है अपेश है
0: भुजंग पर हाथ छंदे गादे बादे नंदी स्वरूपे
1: नमो सर्व माने समस्ति निदाने
0: नमस्तं परमात् नमस्तं निर्माते नमस्तं प्रमाते
1: नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे
0: नमस्तं काले नमस्तं अपाले
1: नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो साह साहे नमो महामाये
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोगे
1: नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं
0: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
1: नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
0: नमो सर्व दृसं नमो सर्व कृसं
1: नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
1: अखीजे अपीजे समस्तं पसीजे
0: कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी
1: सदा सर्वदा स्वित सिद्ध निवासी
0: चरपट छन त्वे प्रसाद अनृत कर्मे अनृत तर्मे
1: अखल जोगे अचल पोगे
0: अचल राज्य अटल साज्य
1: अकल तर्मन अलग कर्मन
0: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राण सर्वं त्राण
1: सर्वं पुक्ता सर्वं युक्ता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं
1: सर्वं काले सर्वं पाले
0: दुआल जन त्वे प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार
1: सर्व मंत्र मान देव पेव आदोदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल
1: जतर तत्र विराजी अवधूत रूप रिसाल
0: नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख
1: आद मूर्त उदार मूर्त जोन आद सेख
0: देश और न पे जाकर रूप रेख न राग
1: जंतर तंतर दिशा विशा हो फैले अनुराग
0: नाम काम बहीन पे कद ताम उन जाहे
1: सर्व मास

0: मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन,
1: चक्कर पकर फिरे चत्र चक्र मानिए पुरतीन,
0: लोक चौदह के बिके जग जाप ही जे जाप,
1: आदे अनाद मूरत थाप्यो सबे जे थाप,
0: परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख पार,
1: सर्व रचो पलहार,
0: काल हीन कला सुनचुकत काल पुरख देश,
1: तरम तामसो परम रहता पूत लख पेख,
0: अंग राग ना रंग जाके जात पात ना नाम,
1: गर गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दाय काम,
0: आप रूप मीकन सतेक पुरख अवधूत,
1: गर गंजन सर पंजन आरूप असूत,
0: अंग हीन पंगनात में पुरख पार,
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रित पार,
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख,
1: सर्व सासर न जानिए जे रूप रंग हरेख,
0: परम वेद पुराण जाके नेत बागत नित,
1: और सिमरे पुराण सासर न आवे हो चित,
0: मधुबार जन तो प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार,
1: आसन अपांग उपमा अनंग,
0: अनपो प्रकाश निजन नास,
1: आजान बाहु सहन साहु,
0: राजान राज पान आन पान,
1: देवान देव उपमा मान,
0: इंद्रान इंद्र बालान बाल,
1: रंगान रंग कालान काल,
0: अनपूत अंग आप अपंग,
1: गत मित अपार गुण गन उदार,
0: गुण प्रणाम निर्भय निकाम,
1: अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड,
0: अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म।

0: नामे अकामे।
1: भुजंग पर याद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता,
0: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने,
1: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती,
0: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले,
1: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे,
0: चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने।
1: चाचरी छंद ना सत्रा ना मित्रा ना परमंग ना पितरा,
0: ना कर्मन ना काय अजन्मन अजाय।

0: निशान शाहे
1: कारण को निंद है के रोजी दहिंद
0: है राजक रहीम है के कर्म करीम है
1: सरबन कली है के सरबन दली है
0: सरबत्र माने के सरबत्र दानी है
1: सरबत्र कौने के सरबत्र पौने
0: सरबत्र देश है के सरबत्र पैसे
1: सरबत्र राजे के सरबत्र साजे
0: सरबत्र दीन है के सरबत्र लीन है
1: सरबत्र जाओ के सरबत्र पाओ
0: सरबत्र देश है के सरबत्र पैसे
1: सरबत्र काले के सरबत्र पाले
0: सरबत्र हंता के सरबत्र गंता
1: सरबत्र पेखी के सरबत्र पेखी
0: सरबत्र काजे के सरबत्र राजे
1: सरबत्र सोखे के सरबत्र पोखे
0: सरबत्र त्राने के सरबत्र पावने
1: सरबत्र देश के सरबत्र पैसे
0: सरबत्र मानिय सदैव प्रदानिय
1: सरबत्र जापे के सरबत्र थापे
0: सरबत्र पाने के सरबत्र माने
1: सरबत्र इंद्रे के सरबत्र चंद्रे
0: सरबंग लीमे के परमंग फहीमे
1: आकल अलामे के साहिब कलामे सलामे सलीखत मुदामे
0: शिकस्ते गरीब परस्ते
1: बिलंदल मकाने

0: आहार जति जतथार सबे सो विचार हजार के देखे
1: श्री भगवान भइए मेरे पुपर एक रति मेरे एक ना लेखे
0: शुद्ध सिपा दुरंद दुबा सो सास ना दुर्दान दलेंगे
1: भारी गमान परे मर मैं कर पर्वत पांका ले ना लेंगे
0: तोर अरीन मरोर मवासनम।

0: तुमरा लखाना जाय पसारा कै बित सजा प्रथम संसारा
1: एक कै रूप अनूप स्वरूप पारंग पयो राव गई पूपा
0: अंदर जे रसे तचकीनी उठ पुछ खान बहार रसलीनी
1: कौ फूल राजा हुआ बैठा कौ सिमट पर संकरे गैठा
0: सगरी सृष्ट खाए चंबवा जुगात स्वरूप से अंबव
1: अब रक्षा में ही तुम करो सिखो बाण सिख संगरो
0: दुज ते उठ पाता सगन मलेश करो रणकाता
1: जे स्तुज तब सन्नी परे तिनके दुष्ट के तुम मरे
0: पुरख जमन पर परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कल को एक बार चाहिए ताकि काल निकट नहीं आए है
0: अच्छा होता है सब काला दुष्ट रिष्ट रे तत्काला
1: कृपा दिस्तन जाए न

0: जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे।
1: जय नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरे।
0: साचा नाम मेरा आधारो,
1: साच नाम आधार मेरे जिन भुखा सब गवाय।
0: पर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया।
1: सदा भगवान के तो गुरु तिहु रिष्टे विद्याय।
0: कह नानक सुनो संतो सब करो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो।
1: वाजे कंस से परवर सभागे गाय सभागे सबद वाजे कला जितका तारिय।
0: पांच दूत तो दबस कीते काल कंडक मारिया।
1: करम पाए जिस जिनस नाम हर के लागे।
0: कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद बाजे।
1: साची लवे बिदेन मानी देन मानी लवे बाजो, क्या करे बेचारिया।
0: तुद वा समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया।
1: एस न होर थाव नाही सबद लाग सवारिया।
0: कह नानक लवे बाजो क्या करे बेचारिया।
1: आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया।
0: जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया।
1: कर कृपा किल पिक कटे ज्ञान अंजन सारिया।
0: अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया।
1: कह नानक ए आनंद है आनंद गुरु ते जानिया।
0: बाबा जिस तू देहे सोई जन पावे।
1: पावे ता सो जन दे जिसनो होर क्या करे बेचारिया।
0: एक भरम भूले फिरे दह दिस एक नाम लाग।

0: से हर हर सदा त्यावे।
1: जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: कहे नानक सच्चे साहेब जो पावे तिवे चलावे।
1: एहो सोहेला सब सुहावा सब तो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया।
0: एहो तिनके मन वस्या।

0: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे,
1: होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले,
0: गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले,
1: आप छड सदा रहे परने गुर बिन अवर ना जाने कोए,
0: कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए,
1: जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे,
0: पावे मुक्त ना होत है कोई पूछो विवेक किया जाए,
1: अनेक दुनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए,
0: फिर मुक्त पाए लाग चन्नी सतगुर शब्द सुनाए,
1: कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए,
0: आवो सिख सतगुरु के प्यारो गावो सच्ची बाणी,
1: बाणी ता गावो गुरु तेरी बाणिया सिर बाणी,
0: जिनको नदर करम होवे हृदय तिना समाणी,
1: पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपयो सारंग पानी,
0: कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी,
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी,
0: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी,
1: कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखानी,
0: हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी,
1: चित जिनका हिलया माया बोलन पे रवानी,
0: कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी,
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ,
0: शब्द रतन जित मन लागा एहो होआ समाओ,
1: सब से ती मन मिलया सच्चे लाया पाओ,
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए,
1: कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ,
0: सिर्फ सकत आप पाए के करता आपे हुकम वर्ताए,
1: हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए,
0: थोड़े बंधन होवे मुकत सबद मन वसाए,
1: गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सेओ लिवलाए,
0: कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए,
1: सिमरत सासर पन पा विचार।

0: सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तब प्रसाद सवैये दीनन की प्रतिपाल करे नित संतो बार गनी मन गारे
1: पश पशु नग नाग नरातम सर्व समय सबको प्रतिपारे
0: है जल में तल में पल में कल के नी कर्म बिचारे
1: दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हारे
0: दात है दुख दोखन को दल दूजन के पल में दल डारे
1: खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे
0: पार न पाए सके पद्मा पद वेदक देव भेद उचारे
1: रोजी राज विलोकत राजक रोग रवान की रोजी नाटा
0: कीट पतंग कुरंग पुजंगम पूत पविख पवान बनाए
1: देव देव खबे हम भेव ना भेव लगे ब्रह्म से फरमाए
0: वेद पुराण देव कुरान सेवत के कर हाथ नाए
1: पूर्ण प्रेम प्रभा बिना पद से किन श्री पद मां पद पाए
0: आद अनंत गाद द्वैख सो पूत पविख पवान अपे है
1: अंत विहीन अनाथ में आप अदाग अदोग छिद्र अशह है
0: लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रभ्य है
1: दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद मावत ए है
0: काम क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न पै है
1: देवहीन स्नेह सबो तन ने व्रकत अगै अछे है
0: जान को देत जान को देत।

0: ताकत है अपनों कर दे कर पाप सबू ना पेटन पावे।
1: और की बात कहां कह तो सो सो बेटे ही के पट बीच बचावे।
0: जाच भुजंग सो दानव देव पेव तुम्हें सब ही कर त्यावे।
1: प्रकाश पताल सातल जाच भुजंग सवे सिर न्यावे।
0: पाए सके नहीं पार प्रवाह को पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेति नेते वेद बतावे।
1: होए तके सभी खुजिया सुरहार करे हर हाथ
0: नारद से चुदरारन से रुमनारक से सब मिल गायो।
1: वेद के देव ना भेद लगयो सब हार परे हर हाथ ना आयो।
0: पाए सके नहीं पार उपमापत सिद्ध सनात सनातन त्यायो।
1: ध्यान करो तह को मन में जह को अमित हो सब जग जायो।
0: वेद पुराणक देव कुरान भेद निर्पाण सबे पचहारे।
1: भेद न पाए सकयो अन भेद को
0: राग न रूप न रेख न रंग न साख न सोग न सांग तिहारे।
1: अगाध अपैगत वैग जो प्यो दिन

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण।

रुगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहुपांत बचावै सत्र अनेक चलावत काव तौ तन एक न लागत पावै राखत है अपनो करदै कर पाप सब हूँ न पेटन पावै और की बात कहा कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावै सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों हुन चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बहिठिया सोही है सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना